0: समय सूचक का साथ
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितौन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5569 5550 7070 161 र 98 5550 7070 153
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस लैब र सभी रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पांजलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4940 4390 580 र 98 5550 2640
3: It's 10 o'clock अहिले 10 बजेको छ।

0: इस समय सूचक का साथमा
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 5855 7070 161 र 9855 7073
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पांजलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4934 4493 580 र 9855 2640
3: It's 11 o'clock. अहिले 11 बजेको छ।

0: टाइम चेक
1: इस समय सूचक का साथ में
2: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 5855 7070 61 र 98 5550 7053।
3: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप, डायग्नोसिस, ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन। फोन 0556 4940 4395 80 र 98 5550 2640।
0: It's 2 o'clock. अहिले 2 बजेको छ।

0: समय सूचक का साथ मा
1: दक्षिण कोरिया मा पढाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5569 53 98550 77061 र 98550 77053
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4934 4493 580 र 98550 26 440
3: It's 3 o'clock अहिले 3 बजेको छ।

0: समय सूचक का साथ मा
1: दक्षिण कोरिया मा पढाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 53 69 98 550 77 061 र 98 550 77 053
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पांजलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 93 440 493 580 र 98 550 26 440
3: It's 6 o'clock. अहिले 6 बजे को छ।
4: Radio Network. अहिले बेलुकी को 6 बज्यो।
5: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्राली को हो।
4: राष्ट्र को शान किसान।
5: A complete piping solutions.

0: दिवस 2083 को गौरवमय अवसर में माडी प्रज्ञा प्रतिष्ठान सगौरव प्रस्तुत गर्दछ। माडी मौलिक संस्कृति उत्सव 2083
1: को कला, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, स्थानीय पहचान, सामाजिक सद्भाव तथा गणतंत्र को भावना उजागर करने उद्देश्य ले आयोजित माणि मौलिक संस्कृति उत्सव में सहभागी बनो।
0: मिति यही जेठ 15 गते शुक्रवार, समय दिवसो 3 बजे देखि, र स्थान माडी नगरपालिका बसंतपुर बजार चितवन।
1: कार्यक्रम का आकर्षण हरू विभिन्न झांकी तथा सांस्कृतिक प्रस्तुति।
0: साझ बसंतपुर बजार मा रैथाने फूड फेस्टिवल,
1: साथै विभिन्न जात जाति को नृत्य एवं सांस्कृतिक प्रस्तुति पनि।
0: अवश्य सहभागी बनौ, माडी को यो गौरवमय उत्सव लाई भव्यता का साथ सफल पारौ।
2: न पक्ष न विपक्ष, सधैं निष्पक्ष।
3: सुदेश FM 93.2 MHz।

0: दिवस 2083 को गौरवमय अवसर में माडी प्रज्ञा प्रतिष्ठान सगौरव प्रस्तुत गर्दछ। माडी मौलिक संस्कृति उत्सव 2083
1: को कला संस्कृति भाषा वेशभूषा स्थानीय पहचान सामाजिक सद्भाव तथा गणतंत्र को भावना उजागर करने उद्देश्य ले आयोजित माणी मौलिक संस्कृति उत्सव में सहभागी बनो।
0: मिति यही जेठ 15 गते शुक्रवार समय दिवसो 3 बजे देखि र स्थान माडी नगरपालिका बसंतपुर बजार चितवन।
1: कार्यक्रम का आकर्षण विभिन्न झांकी तथा